0: 107 FM रेनबो यानी दिल से दिल तक कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्तों। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, फिर जुड़ते हैं आप सभी के साथ।
1: সত্যি কথা বলি, এখন তো গরম পড়ে গেছে আর হাজার হাজার টাকার ইলেকট্রিক বিলও আসা শুরু হয়ে গেছে।
2: গিন্নি তো কবে থেকেই বলছে সোলার প্যানেল লাগানোর কথা,
1: বলছে সরকার সাবসিডিও দিচ্ছে।
2: আমি যাকেই জিজ্ঞেস করছি সবাই বলছে জিরো বিল আসতে শুরু করেছে, ভাবছি এবার লাগিয়েই নিই। বিদ্যুৎ যখন বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে তখন লাগাচ্ছেন না কেন? আপনিও লাগিয়ে নিন PM সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা। যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsurjaghar.gov.in।
0: दोस्तों आज नॉनस्टॉप गपशप में बहुत सारी बातें होंगी, खबरों की दुनिया, मौसम की जानकारी, साथ ही इतिहास में आज का दिन। इन सभी के बीच कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। उदित नारायण की आवाज़ में इसे लिया गया है, इस प्यारे से गीत को। फिल्म का नाम है दस्तक, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार राजेश रोशन। इसी गाने के साथ बढ़ते हैं नॉनस्टॉप गपशप अपने रेडियो दोस्त ओम के साथ।

दोस्तों ये प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन सकते हैं। RBI गवर्नर ने बताई कब आएंगे प्लास्टिक के नोट। देश में जल्द ही प्लास्टिक के नोट देखने को मिल सकते हैं। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत के पहले प्लास्टिक या पॉलीमर नोट अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में चलन में आ सकते हैं। सरकार ने कोफिल ट्रायल के लिए 2 अरब पॉलीमर बैंक नोट छापने की मंजूरी दी है। इनमें से 1 अरब नोट 10 रुपए के और 1 अरब नोट 20 रुपए के होंगे। हालांकि अभी कागजी नोटों को पूरी तरह से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दोनों तरह के नोट साथ साथ चलन में रहेंगे। मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लास्टिक नोट से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट अभी पायलट स्टेज पर है और इसे आगे बढ़ाने का फैसला टेस्टिंग के नतीजों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुए तो अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में पॉलीमर नोट चलन में आ जाएंगे। मल्होत्रा ने आगे कहा कि पॉलीमर नोट लाने के पीछे 2 मकसद हैं। ये नोट ज़्यादा टिकाऊ बनते हैं। यह खासकर कम कीमत वाले नोटों के लिए जरूरी है जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। कई देशों में ये नोट 30 से ज़्यादा साल से समय से चलन में हैं। इनकी उम्र कागजी नोटों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। दूसरा मकसद यह है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें बढ़ती हैं हमारी क्षमता भी बढ़ती है।

दोस्तों 8 अगस्त 1942 का साल, हिंद महासागर से उठ रही मानसून की हवाएं भारत पहुंच चुकी थीं। उनके साथ ही घमासान नौसैनिक युद्ध की खबर भी पहुंची। विश्व दो ध्रुवों में बंट चुका था, भारत भी उबल रहा था, सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियों को तोड़ डालने का इंतजार कर रहा था। ऐसे वक्त में विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत

के समर्थन के बदले औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव के साथ सर स्टैनफर्ड क्रिप्स का भारत आगमन हुआ। ब्रिटेन के महारानी के प्रति निष्ठा के बदले भारत को स्वशासन देने का प्रस्ताव किया, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने देश को उपनिवेश बनता देखने के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं किया। इसीलिए 8 अगस्त 1942 की पूर्व संध्या पर गांधी जी ने देशवासियों के समक्ष स्वघनाद करते हुए कहा, ये एक छोटा सा मंत्र है जो मैं दे रहा हूं, आप चाहें तो इसे अपने हृदय पर अंकित कर सकते हैं और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। ये मंत्र है, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे समय प्रारंभ किया गया जब दुनिया जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रही थी। पश्चिम में युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होते जा रहे थे। भारत एक ओर महात्मा गांधी के नेतृत्व की आशा कर रहा था, जो अहिंसक उपाय और सत्याग्रह से समाज को बदलना चाहते थे। दूसरी तरफ बंगाल के शेर सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, भारत को आजाद कराने के लिए एक फौज के साथ निकल पड़े। जन आंदोलन से भारत की आजादी के आंदोलन की मजबूत जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और इसमें बस स्वतंत्रता के बीज बोने भर की देर थी। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होने के 24 घंटे के ही भीतर सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जनता का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, फिर भी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच से ही नेता उभर कर सामने आने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली जैसे नेता उभर कर सामने आए। आंदोलनकारियों ने देश को बहुत से भागों से समानांतर सरकारें गठित की। तिरंगा हाथ में लिए पुलिस की गोलियों से शहीद होते आगे बढ़ते रहने का भारत छोड़ो आंदोलन बंगाल में तमलुक में 6,000 लोगों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए, यह आंदोलन मातंगिनी हाजरा के नेतृत्व में एक ऐसा इतिहास बना जहां तिरंगा हाथ में लिए पुलिस की गोलियों से वह शहीद हुई, लेकिन उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा। इसी तरह सुचेता कृपलानी ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का बाद में गौरव हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन इस अर्थ में एक युगांतकारी आंदोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी। ग्वालिया टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने कहा, जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और वही इस बात का फैसला करेंगे कि इसे कैसा सौंपा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही आजादी की लड़ाई का नेतृत्व हम भारत के लोगों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताजा मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देश के युवाओं का आह्वान किया कि वे संकल्प से सिद्धि का अभियान छेड़ें और साथ ही साथ असल में यह आंदोलन भारत से गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता को मार भगाने का संकल्प होगा। उन्होंने कहा, 1942 से 47 तक के 5 वर्षों में समूचा राष्ट्र अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आज 8 अगस्त है, यानी 8 अगस्त 1942 में आज ही के दिन इसकी शंखनाद हुई, जिसने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

107 FM रेनबो यानी दिल से दिल तक। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:28 हुए हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपने रेडियो दोस्त ओम के साथ। स्वतंत्रता दिवस परेड में इस बार छाया रहेगा बंगाल का जलवा। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। केंद्र व राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की थीम पर सजेंगी झांकियां। एक ओर जहां हर घर तिरंगा अभियान जोर शोरों से पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मध्य स्थित ऐतिहासिक रेड रोड पर 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अभूतपूर्व भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। नई सरकार के कार्यकाल का यह पहला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, इसलिए इस बार समारोह में कई खास आकर्षण जोड़े गए हैं। 15 अगस्त की सुबह परेड के दौरान रेड रोड पर कुल 11 आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इन झांकियों में केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया जाएगा। कार्यक्रम में नॉनस्टॉप गपशप में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सैयारा फहीद अब्दुल्ला की आवाज में सुनेंगे इस प्यारे से गीत को। टाइटल सॉन्ग सैयारा, इरशाद कमील ने इसे लिखा है। संगीत से सजा है तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान ने।

107 FM रेनबो यानी दिल से दिल तक स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:35 हुए हैं दोस्तों। कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप, आप हैं अपने रेडियो दोस्त ओम के साथ।

जी हाँ दोस्तों, जहाँ देश में चारों ओर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, वहीं पूर्व CDS अनिल चौहान ने बताई सीज फायर इनसाइड की स्टोरी। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस समय भारतीय सेना अपने लक्ष्यों का एक हिस्सा पूरा कर पाई थी। द प्रिंट एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान जनरल चौहान ने बताया, 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान ने DGMO हॉटलाइन के जरिए भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, उस समय भारत ने तत्काल सहमति देने के बजाय अपने सैन्य अभियानों को पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से यह मैसेज दिया जा रहा था कि वह 48 घंटे के भीतर भारत से निपट लेगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने बातचीत की पहल शुरू कर दी। अनिल चौहान के अनुसार पाकिस्तान को शुरुआत में यह लगा था कि उसके हमलों से भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। यही है भारतीय सेना का जज्बा हौसला, जिसे पूरी दुनिया मानती है, और इसी देश की एकता और समरसता को कायम करने के लिए भारत सरकार की ओर से 9 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म धूम 2 से लिए गए इस प्यारे से गीत को सुनेंगे। गीतकार समीर, संगीतकार प्रीतम।

107 FM रेम्बो यानी दिल से दिल तक कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में हम आ पहुंचे हैं दोस्तों मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में कोलकाता एवं आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की बूंदाबांदी के बीच गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूर्ण संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीते कल का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस अर्थात सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम तथा न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस अर्थात सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। हवा में नमी यानी अधिकतम आर्द्रता 99% तथा न्यूनतम आर्द्रता 86% दर्ज की गई। तो दोस्तों ये था मौसम का हाल। अरिजीत सिंह अरमान खान की आवाज में फिल्म धुरंधर से लिए गए इस प्यारे से गीत को सुनेंगे। इरशाद कमील ने इसे लिखा है, शाश्वत सचदेव ने संगीत से सजाया है।

107 FM रेनबो यानी दिल से दिल तक। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:51 और 45 सेकंड हुए हैं दोस्तों। नॉनस्टॉप गपशप में हम आखिरी पायदान पे यानी इतिहास में आज का दिन। देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 8 अगस्त का दिन अफगानिस्तान में भी एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। 1988 में 8 अगस्त के दिन ही 9 वर्ष की युद्ध के बाद अफगानिस्तान से रूसी सेना की वापसी की शुरुआत हुई थी। 1509 में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेवराय की ताजपोशी हुई। 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन 8 अगस्त 1609 वेनिस की सीनेट ने गैलीलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण किया। 1763 8 अगस्त आज ही के दिन वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ। 8 अगस्त 1864 आज ही के दिन जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। 8 अगस्त 1876 थॉमस अल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया। 1900 ईस्वी में आज ही के दिन बोस्टन में पहली डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई। 8 अगस्त 1908 शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ। 8 अगस्त 1919 ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आज़ादी को मंजूरी दी। 8 अगस्त 1947 पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी। 8 अगस्त 1988 8 वर्ष तक चले संघर्ष के बाद ईरान और इराक के बीच युद्ध विराम की घोषणा। आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1990 इराक के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जे का ऐलान किया। 8 अगस्त 2010 तेजस्विनी सावंत म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। दोस्तों, मौसम की जानकारी, खबरों में खास और साथ ही साथ इतिहास में आज के दिन के माध्यम से आप पहुंचे हैं आखिरी पायदान पे। कार्यक्रम में जाते जाते कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म पापा कहते हैं से लिए गए इस प्यारे से गीत को सुनेंगे। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार राजेश रोशन। इसी गाने के साथ अपने रेडियो दोस्त ओम को दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को ओम का प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।

0: 3:35 और 35 सेकंड। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोलकाता 107 FM रेनबो दिल से दिल तक में। आज मैं हूं आपके संग दोपहर 3 का तड़का कार्यक्रम में आपकी आरजे भारती। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आज की परियोजना प्रस्तुति रहेगी आपके साथ।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम जिस परियोजना पर बात करेंगे वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना तथा उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाना है। साल 2021 में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रखा गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय में गर्म और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। भोजन में अनाज, दाल, सब्जियां और आवश्यकता के अनुसार अन्य पौष्टिक पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना, पोषण स्तर में सुधार करना और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना से एक और महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इससे बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलने से उनके परिवार पर भोजन का कुछ बोझ भी कम होता है। साथ ही सभी बच्चों को एक साथ भोजन मिलने से उनमें समानता, सहयोग और सामाजिक एकता की भावना विकसित होती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने में भी एक नई दिशा प्रदान करता है। विद्यालयों में स्वच्छता, पोषण संबंधी जागरूकता और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया जाता है। हालांकि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, समय पर वितरण और उचित निगरानी सुनिश्चित करना आवश्यक है। सरकार और विद्यालय प्रशासन के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भारत के बच्चों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इस योजना का क्रियान्वयन देश के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, इस वक्त हमने बात की परियोजना प्रस्तुति में इस योजना की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं 3 का तड़का। 3 का तड़का। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। 3 का तड़का। 3 का तड़का। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर। रेनबो पर।
0: 3:06 और 55 सेकंड। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी भारती के संग, और मैं रहूंगी शाम के 4 बजे तक और बताऊंगी आपको लेटेस्ट बॉलीवुड की न्यूज़ और लेटेस्ट रिलीजेस की क्या है खबर, और साथ ही करेंगे हिंदी फिल्मों से जुड़ी कुछ खास बातें भी। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में परिणीता फिल्म के इस गीत से।

दोस्तों, इस हफ्ते हिंदी फिल्मों के बेहतरीन एक्टर गजनी, लगान और महाभारत में अपनी अदाकारी से दूसरों को और सभी प्रशंसकों को प्रभावित करने वाले प्रदीप रावत, अभिनेता प्रदीप रावत, इनका 74 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से उनका निधन हो गया। मंगलवार को निधन के बाद गुरुवार को उनकी याद में एक प्रार्थना सभा रखी गई, जहां पर उनके इंडस्ट्री से कई नज़दीकी दोस्त ने परिवार वालों के साथ अपना शोक व्यक्त किया। वाकई में इतने महान अभिनेता को खोकर वाकई में हिंदी फिल्म में एक शोक की छाया ज़रूर छा गई है। दोस्तों, उनकी फिल्म गजनी हो या फिर लगान हो, और ऐसी कई सारी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का प्रदर्शन किया, चाहे वो फिल्म में एक छोटा किरदार ही क्यों ना हो या फिर एक विलन के रूप में उन्होंने अपनी छाप, अभिनय की छाप छोड़ी। फिलहाल गजनी फिल्म से एक गीत आप सभी के लिए, और इसके बाद रहेगा सरफरोश फिल्म का एक और गीत। बैक टू बैक सुनेंगे आप इन दो गीतों को कार्यक्रम 3 का तड़का में।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: आप सुन रहे कार्यक्रम तीन का तड़का, जहां मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो द रियल रेडियो पर। और इसी हफ्ते रिलीज हुई है OTT पर जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ की दमदार कहानी वाली फिल्म ऑपरेशन सफेद सागर। भाई है क्या ये फिल्म, बताएं आपको इस फिल्म की थोड़ी थोड़ी सी कहानी। कारगिल युद्ध भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में से जाना जाता है, और इस फिल्म में सैन्य अभियानों में से एक रोमांचक कथा को दर्शाया गया है। देशभक्ति की भावना पर निर्भर न रहकर इस फिल्म ने 6 भागों वाली श्रृंखला हवाई युद्ध, राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत बलिदान को एक दिलचस्प कहानी में पिरोई है। शानदार हवाई कार्रवाई, ऐतिहासिक घटनाओं का ये चित्रण जो है हुआ है इस फिल्म में, बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म में जिमी शेरगिल ने विंग कमांडर टोनी धनोआ के रूप में दमदार अभिनय किया है, जो कि सिद्धार्थ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के रूप में दिखे हैं। युवा अधिकारियों में मिहिर आहूजा और अभय वर्मा का अभिनय भी दमदार रहा है, और ये फिल्म आपको जरूर OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहिए। बेहतरीन ढंग से निर्माण किया गया है ऑपरेशन सफेद सागर का, जो एक रोमांचक और सराहनीय श्रद्धांजलि वाली फिल्म रही है। दोस्तों, इस फिल्म के कलाकारों की तो हमने बात की, और बताएं आपको कि ये इस फिल्म के निर्देशक हैं ओनी सेन। और दोस्तों, ये फिल्म आप अपने घर में 13 वर्ष से का जो आपका बच्चा है उसके साथ भी बैठकर देख सकते हैं, और उससे अधिक आयु वाले जो है वो देख सकते हैं, व्यूवर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात की हमने ऑपरेशन सफेद सागर की। अब बता दें आपको कि क्या क्या फिल्म आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली है। बंटवारा 1947 की रिलीज डेट एकदम नजदीक आ गई है। 14 अगस्त को फिल्म नेक्स्ट वीक आने वाले फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज होगी। जिस फिल्म के कलाकारों में हैं सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण देओल। ये फिल्म सिनेमाघरों में आने वाली है 14 अगस्त को। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। अब आप समझ ही लीजिए कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी एक साथ तो क्या ही कमाल होगा। आवारापन 2 भी 14 अगस्त को रिलीज होगी। इमरान हाशमी की लोकप्रिय फिल्म आवारापन का सीक्वल आवारापन 2 इसी दिन रिलीज होगी, बंटवारा 1947 के साथ। और देखते हैं कि कैसी रहती है ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर। फिलहाल आवारापन 2 से ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज़ में और मुस्तफ़ा जहीद की आवाज़ में, आवारापन से तो फिर आओ, दोनों गानों का मैजिकल मैजिक आप जो है इस वक्त 107 FM रेनबो पर फील करेंगे।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: कार्यक्रम तीन का तड़का, मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती, और बात करेंगे इस वक्त भूल भुलैया की। भूल भुलैया 4 की अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बात करने वाली हूं या कोई भी खबर देने वाली हूं, तो हाँ, थोड़ी बहुत खबर उसे रिलेटेड रहेगी, क्योंकि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं बाज़मी जी, जी हाँ, नीज़ बाज़मी जी ने बताया है कि वो भूल भुलैया 4 को लेकर योजना बना रहे हैं, और जिसमें ज़रूर कार्तिक आर्यन रूह बाबा के किरदार में ही वापसी करेंगे। लेकिन चर्चा में ये फिल्म इसलिए भी है क्योंकि फिल्म के निर्देशक का कहना है कि जब भी इसकी कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो उसके सीक्वल की, नेक्स्ट सीक्वल की भी जल्दबाजी देखने को मिलती है, या फिर दर्शकों के मन में ये सवाल होता है कि भाई इसका नेक्स्ट वर्जन कब आएगा। लेकिन इस बार अनीस जी ने कहा है कि एक अच्छी कहानी की उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने नायिका को मंजुलिका को तो बनाया ही, और फिल्म में चौथ इस नायक को भी मंजुलिका बना दिया है। अब उन्हें इंतज़ार है कुछ नए क्रिएटिव कहानी का। तो भाई, जो भी आप स्क्रिप्ट राइटर है, जो भी है, उनके लिए कहानी बनाइए ताकि रूह बाबा को फिर से हम देखें बड़े पर्दे पर, और एक नई कहानी को भी देखें। लेकिन कहते हैं ना कि वो पहली वाली, एकदम नंबर वन वाली जो है अक्षय कुमार वाली, वैसी टाइप की कहानी हो तो बढ़िया होगी। ये भाई अनीस बाज़मी जी अगर इस बारे में थोड़ा सा विचार करें कि कुछ ऐसी जहाँ पर हंसते खेलते उड़ते हुए भूत ना देखकर हमें कुछ प्रैक्टिकल वाले भूत दिखे तो बेटर होगा। फिलहाल नीरज श्रीधर की आवाज़ में भूल भुलैया का ये ट्रैक।

वाकई में इस गीत का ये वाला हिस्सा तो ज़रूर हम लोगों को, खासकर बंगालियों को और खासकर जो पश्चिम बंगाल में है, जो कोलकाता में है, बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट, एक्टिवेट और जितना भी एलिवेट किया होगा वो तो ज़रूर एकदम से बनता है, क्योंकि कुछ महीनों में ही ऐसा ही हम एक्साइटमेंट देख पाएंगे हमारी सड़कों पर, हमारे शहर की सड़कों पर, गांव में, जगह जगह पर जहां माँ दुर्गा का आगमन होगा। वैसे अभी इस फीलिंग से खुद को निकाल कर दूसरी जगह पर रखते हुए बता दें कि कार्यक्रम 3 का तड़का में आप हैं इस वक्त अपनी आरजे भारती के संग, और हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्मों की रिलीजेस की, जो कुछ इस प्रकार है। श्रद्धा कपूर की फिल्म एथा रिलीज होगी इसी महीने 28 अगस्त को। इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे नाना पाटेकर और रणदीप हुडा भी। नाना पाटेकर को बहुत दिनों बाद हम बड़े पर्दे पर देखेंगे, और ऐसा ही कुछ श्रद्धा कपूर के लिए भी मैं कह सकती हूँ। बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को ही। और घोसला का घोसला 2 की तैयारी भी एकदम जोरों शोरों से हो रही है। 28 अगस्त को ये फिल्म भी रिलीज होगी। लंबे समय के बाद इस फिल्म की सीक्वल आई है, और हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से इस फिल्म के स्टारकास्ट ने मिलकर अपने रील को बनाया, और किस तरह से वो बस कितने सारे कुछ पल में ही इसने कितने सारे लाइक्स और कितने व्यूवरशिप बढ़ी थी इस रील्स की। तो इसका मतलब ये है कि इन चारों को, मतलब इस फिल्म के जो चार किरदार थे मेन, उनको देखने के लिए दर्शक वाकई में बहुत ज़्यादा

फॉरवर्ड कर रही है कुछ इस तरह से. मैं भी इस गीत के लिए सुनने के लिए एकदम सोच रही हूँ कि हाँ कि सुनो कि ना, हाँ कि हाँ. समझ ही गए होंगे आप, महाराज फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज़ में ये गीत आप सभी के लिए इस वक्त कार्यक्रम तीन का तड़का में. मैं हूँ आपके संग आपकी आज भारती. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का.

दोस्तों, अब थे अपनी दोस्त भारती के साथ कार्यक्रम तीन का तड़का में 107 FM रेनबो पर। मुलाकात होगी आपसे ठीक FM गोल्ड पर। लेकर आऊंगी कार्यक्रम चायन क्लासिक्स। दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए सोनू निगम और आशीष कौर की आवाज में बिजुरिया ये ट्रैक सुन रही है। साथ रहिए FM रेनबो के।

0: तुम्ही सुनछो विकेंड कैफे 107 एफएम रेनबो ते विकेंड कैफे विकेंड कैफे
1: यस विकेंड कैफे सुनछो तुम्ही आ तोमार जोनो छोड़ा कटिंग टा आरो एक बार

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने
2: सात बजकर 3 मिनट और 16 सेकंड। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। 107 FM रेनबो दिल से दिल तक में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक, शनिवार स्पेशल जाने अनजाने अपनी दोस्त भारती के संग। और जैसे कहा, मैं ठीक हूँ और आप हैं मेरे संग। तो कैसे हैं आप? वाकई में अच्छे हैं, यही हमारी चाह है और यही हमारी आशा है कि आप स्वस्थ रहे और ऐसे ही हमारे साथ सुनते रहे। दोस्तों, कार्यक्रम जाने अनजाने जहां हम आपको सुनाते हैं गीतों के पीछे की कहानी, तो कभी फिल्म के पीछे की कहानी और क्या थी ये फिल्म, क्यों खास बनी थी ये फिल्म, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत तो हम थोड़ा सा भीगते हुए और थोड़ा सा नाचते हुए करेंगे, क्योंकि फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों और गीत ये है अकाशा सिंह और साकेत टंडन की आवाज़ में, धागे ना तिनक दिन। जी हाँ, ताल भी है, सुर भी है, गीत भी है, 107 FM रेनबो भी है, तो फिर गीत भी आपके साथ रहेगा ना, और मैं भी रहूँगी शाम के 8 बजे तक। सुनते रहिए, साथ रहिए।

अब इस गीत के पीछे की कहानी मैं क्या बोलूं भाई, ये तो था इसका रीमिक्स्ड वर्जन। हालांकि ये गाना नया एकदम नहीं था, 2008 की रिलीज हुई फिल्म बचना ए हसीनों में ये गीत लिया गया था, हम किसी से कम नहीं फिल्म से, 1977 रिलीज फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत था और गाया था एवरग्रीन किशोर कुमार ने। और दोस्तों इस गाने में भी कुछ ऐसे ही पिता और पुत्र की जोड़ी थी, चाहे वो गायक हो या फिर एक्टर हो, क्योंकि इस फिल्म को पिक्चराइज किया गया था 1977 में ऋषि कपूर पर, तो यहाँ पर हुए थे उनके सुपुत्र रणबीर कपूर की एंट्री इस गीत के साथ। और किशोर कुमार के साथ साथ इस गाने में विशाल शेखर ने पुराने गाने को सीधा रिमिक्स करने के बजाय उसे पूरी तरह नए अंदाज में रिवर्क किया और शुरुआत में किशोर कुमार की मूल रिकॉर्डिंग का हिस्सा रखा और उनके बेटे की आवाज़ को भी एक ट्रैक में डाला गया, उनके बेटे सुमित कुमार की आवाज़ को भी एक गाने के हिस्से में डाला गया। और रणबीर कपूर के साथ साथ उनके जो ड्रेसेस चेंजेस हुए और फिर उन इस गीत में इस फिल्म के जो तीन लीडिंग एक्ट्रेस थी, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बासु और थी उनके साथ मिनीषा लांबा भी दिखाई दिए थे, जो कि दिखा रहे थे कि इस फिल्म में उनके जो तीन मेजर रिलेशनशिप्स थे किस तरह से ये फिल्म में ये तीन मेजर रिलेशनशिप के इर्द गिर्द रणबीर कपूर जो इस फिल्म में उन्होंने एक्ट किया था उनकी कहानी इर्द गिर्द घिरती है। तो दोस्तों ये जो ट्रैक था ये बहुत एक फ्रेश अंदाज में पेश किया गया था, जिसे पेश किया था विशाल शेखर, खुद पुराने गाने के वे बहुत बड़े फैन हैं। और संगीतकार विशाल ददलानी ने बताया भी था कि जब उन्हें टाइटल ट्रैक बनाने का मौका मिला तो वे मूल गाने की लोकप्रियता को देखते हुए उसे सम्मान देते हुए एक नया रूप देना चाहते थे और वाकई में वो एकदम से सफल रहे भी। दोस्तों कार्यक्रम में अगला गीत हम शामिल करेंगे आपके लिए अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ में। आप सुनेंगे कौन सा गीत? बंटी और बबली का कजरारे वाला गीत। इस गीत की भी है कहानी और इस फिल्म की भी है बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज और बिहाइंड द सीन्स कहानी, ज़रूर बताएंगे आपको इस गीत के उस पार। बता दें आपको कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाए लोक, जाने अनजाने अपनी दोस्त और होस्ट और आरजे भारती के संग रहूंगी 8 बजे तक आपके साथ और ठीक 8:02 पर आपके साथ रहेंगी संचिता।

दोस्तों इस गीत में तीन तिकड़ी देखने को मिली, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, और वैसे ही गायकी की तिकड़ी भी सुनने को मिली अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली, गुलजार साहब की गीत और संगीत शंकर एहसान लॉय का। कजरारे की कल्पना में ब्रज क्षेत्र की लोक संगीत परंपरा का प्रभाव माना जाता है, जहां काजल लगे गहरे नैनों की तुलना जो है वो की जाती है कृष्ण से। गाने में मल्ली मारान और दरीबा का उल्लेख आता है जो पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक इलाके हैं, और गुलजार ने प्रेम कहानी को दिल्ली की गलियों और संस्कृति से जोड़ दिया है। दोस्तों एक और ये गाना शायद से लगभग बन ही नहीं पाता, क्योंकि निर्देशक शाद अली के अनुसार अमिताभ बच्चन शुरुआत में इस गाने को फिल्माने को लेकर उत्साहित नहीं थे और उन्होंने इसे शूट ना करने का सुझाव भी दिया था। कोरियोग्राफर रही थी इस गीत की वैभवी मर्चेंट, जिन्होंने बाद में बताया कि ऐश्वर्या का अमिताभ बच्चन को ए हैंडसम कहना गाने के एक खास पलों में से था। और गाने में फिल्मी संगीत के साथ हम कव्वाली, गज़ल जैसे कुछ शैली की मिश्रण हम देख पाते हैं, जिसमें इस दौर के सामान्य डांस नंबरों से उसे एक अलग पहचान दी थी। आगे सुनेंगे हम जो गीत, वो है फिल्म गैंगस्टर, 2006 रिलीज फिल्म गैंगस्टर का। हालांकि हर गीत ही बहुत ही दिल के करीब है, लेकिन ये गीत जब भी इस मौसम में, भीगी भीगी सी मौसम में हम सुनते हैं तो अचानक से जेम्स की आवाज़ याद आती है। जी हाँ, उनका असली नाम महफूज अनाम जेम्स है और वे बांग्लादेश के प्रसिद्ध रॉक गायक रहे हैं। इनके गाने का संगीत प्रीतम ने दिया था और गीत मयूर पुरी ने लिखा था। ये पूरी तरह से एक नया गाना नहीं है दोस्तों, पुराने गीत की धुन को प्रीतम और निर्देशक अनुराग बासु कॉलेज के दिनों में गाया करते थे। बाद में इस गीत के अधिकार लेकर इसे एक गैंगस्टर के लिए एक नए रूप में पेश किया गया था। जेम्स की खास आवाज़ जैसे गाने की उदास रॉक आधारित आवाज़ होनी चाहिए, उसे इस दौर के सामान्य जो गीत थे उससे एक अलग पहचान देते थे। भीगी भीगी बारिश, यादों और अधूरी प्रेम कहानी के जरिए विरह को और भी जैसे कि कूट कूट कर हमारे सामने पेश कर देता हो, वही काम इस गीत ने किया था। जेम्स की आवाज में इस वक्त गैंगस्टर फिल्म का यही गीत आप सभी के लिए, कार्यक्रम चाय लोक सैटरडे स्पेशल, जाने अनजाने में। मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जाने अनजाने।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक सैटरडे स्पेशल जाने अनजाने, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो द रियल रेडियो पर। मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती, रहूंगी 8 बजे तक। तो भाई, जाने अनजाने एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम कभी आपको सुनाते हैं गीत के पीछे की स्टोरी, गीत की खासियत क्या थी जो ये गीत इतनी रही थी सुपरहिट और जिसे आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो कभी उस गीत को और उस गीत के खास फिल्म को हम लोग उसे लेकर भी बात करते हैं जो कुछ ऐसा करने वाले हैं इस वक्त। हालांकि इस फिल्म के भी सारे गीत रहे थे बहुचर्चित और एकदम से हिट रहे थे इसके गीत भी। म्यूजिक ऑब्वियसली 1998 की बात करें तो जतिन ललित को हम कैसे भूल सकते, इस फिल्म में भी उनका ही म्यूजिक था। बात करें हम फिल्म गुलाम की, आमिर खान और रानी मुखर्जी स्टारर ये फिल्म थी सुपरहिट जिसका निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया था। इस गीत में, इस फिल्म में ऐसी कई सारी खास बात थी जहां पर इस फिल्म को बनाया जाता है एकदम एक्सेप्शन, क्योंकि इसी फिल्म के साथ आमिर खान ने आती के अखंडाला कहकर अपना सिंगिंग डेब्यू किया था जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था उस वक्त के लिए, और खंडाला तो खैर फेमस हो ही गया था। फिल्म के चर्चित ट्रेन सीन में भी आमिर खान ने खुद स्टंट किए थे। बाद में एडिटिंग रूम में सीन देखकर उन्हें एहसास हुआ कि ट्रेन उनके कितने करीब से गुजरी थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सभी दर्शकों से कि ये सीन प्लीज़ आप ना दोहराएं। क्लाइमैक्स में किरदार को काफ़ी पिटा हुआ दिखाने के लिए आमिर खान ने 8 दिनों तक, कहा जाता है कि 8 दिनों तक अपना चेहरा नहीं धोया ताकि उनका लुक अधिक वास्तविक लगे। ओ माय गॉड, मतलब वाकई में चेहरा नहीं धोया, ब्रश किया था कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन कथित तौर पर ये बात फेमस थी। आती के खंडालास ये जो गाना था जो मैंने आपसे कहा कि एक पॉप कल्चर मोमेंट बन गया था उस वक्त, जतिन ललित के संगीत और नितिन रायकर के बोलो वाला ये गाना 1998 में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और खंडाला को लेकर बॉलीवुड की लोकप्रिय छवि में भी इसकी खास जगह बनी थी। दोस्तों, फिल्म के शुरुआती दौर में महेश भट्ट जो है वो सबसे पहले जुड़े थे निर्देशन के संग, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म से दूरी बना ली। 2025 में दीपक तिजोरी ने इसके पीछे आमिर खान के साथ उनके रचनात्मक मतभेदों का दावा किया था और ये दीपक तिजोरी द्वारा बताया गया किस्सा है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं बोलते हैं, बस ये दीपक तिजोरी ने बोला था। दोस्तों, बाद में इसका निर्देशन संभाला था विक्रम भट्ट ने। ये रानी मुखर्जी की आवाज़ के कारण भी गुलाम फिल्म बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी आवाज़ को डब किया गया था और एक नेचुरल हस्की आवाज़ को लेकर फिल्म इंडस्ट्री को संदेह था, इसलिए इस फिल्म के लिए उनकी आवाज़ को भी डब किया गया था। वो आप फिल्म देखने से ही पता लगा लेंगे। तो इस वक्त फिल्म देखेंगे तो नहीं, लेकिन इस वक्त गीत ज़रूर सुनेंगे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: जाने अनजाने।
1: पिछला गीत आपने सुना फिल्म 100 डे से लता मंगेशकर एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। दोस्तों इस वक्त जिस गीत को हम सुनेंगे वो है केके की आवाज में जिस्म 2 से। मशहूर गायक केके ने इस गीत को गाया। इस गीत का एक फीमेल वर्जन भी है जिसे इस फिल्म में श्रेया घोषाल ने गाया था। फिल्म का संगीत आरको प्रभो मुखर्जी का है। इस गीत को सनी लियोन, रणदीप हुडा और अरुणोदय सिंह पर फिल्माया गया था। इस गीत की खास बात यह है कि शुरुआत इसकी गिटार और पियानो की धुन से होती है और जिसके बाद केके की आवाज इसे एक खास रंग देती है। सुनना चाहते हैं जरूर आज की शाम केके के नाम इस वक्त इस गीत के थ्रू, जिस्म 2 का ये गीत।

दोस्तों, इस वक्त आपको छोड़ जाऊंगी एक और हंसी गीत के साथ, श्रेया घोषाल की आवाज में। सही पहचाना आपने, हमारी अधूरी कहानी इस वक्त इस फिल्म से सुनिए। लेकिन आपकी और हमारी कहानी अधूरी कहाँ है? ठीक 8:02 पर संचिता रहेगी आपकी कार्यक्रम छायालोक में, जाने अनजाने में कार्यक्रम को आपके साथ आगे बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो के, और मुझे अपनी दोस्त भारती को दीजिए आज के लिए यहीं पे इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: पुराने गीतों का सफर, छायालोक। सुरों की सरिता में बहने का समय आ गया है, जहां ना कोई बंधन है ना कोई शर्त है, बस मन की मर्जी, दिल की धड़कन और संगीत का अनमोल संगम। यह है आपका अपना मुक्त मन का संगीत सफर, जहां प्रस्तोता और श्रोता मिलकर रचते हैं हर पल एक नई महफिल। तो आइए सुरों की इस अनमोल यात्रा में शामिल हो जाइए, लेकिन इसके लिए 2213131 डायल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर गीत सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिल से महसूस भी होता है। तो चलिए जाने अनजाने के बाद कुछ जाने पहचाने से सफर पर चलते हैं आपके साथ। लेकिन पहला गीत है मेरे पसंद का, और आवाजें हैं सोनू निगम और पलक मुच्छल की।

0: जब से मोहब्बत हो गई है तो दुनिया खूबसूरत अपने आप ही लगने लगती है। फिलहाल हमारे साथ एक कोशिश कोई है। हेलो
1: हेलो
0: शायद हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, तो आप कोशिश करते रहिए और हम आप तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन हाँ, आज क्योंकि है बहुत खास दिन, एक 84वां जो है वर्षगांठ है क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो हम चाहते हैं कि अगर आप देशभक्ति गीत या पैट्रियोटिक गीत हमें तोहफे पर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगले गीत की ओर बढ़ते हुए, बादशाह है फिल्म का नाम, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज, हम तो दीवाने हुए यार। समीर ने लिखा और अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है छाया लोग।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक बारो 7 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक और मेरे साथ थे राखाल दास जी हावड़ा से। इनकी फोन कट गई। इन्होंने बहुत ही एक पुरानी फिल्म की फरमाइश की जो है लीडर फिल्म से। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज, शकील बदौनी के बोल को नौशाद साहब ने लिखा। 1964 की फिल्म है, भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म थी। आपको बता दें राम मुखर्जी ने निर्देशन किया और निर्माण शशधर मुखर्जी की है। पटकथा दिलीप कुमार ने लिखी थी, जी हाँ। और फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जयंत ने अभिनय किया। तो इस फिल्म से इस गीत की फरमाइश आई है। राखाल दास जी ने इस गीत को सुनना चाहा हावड़ा से। कार्यक्रम है छायालोक और आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ 107 FM रेनबो 8:18।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: कार्यक्रम छायालोक का दूसरा भाग आपके साथ हूं मैं संचिता और 8:24:39। आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ, 2019 की गीत है। वैसे श्रोताओं से मैं चाहूंगी कि वो कोशिश करते रहें, 2213-1341 हमारा नंबर है। फिल्म का नाम है कबीर सिंह, 2019 की फिल्म। प्रेम की सादगी महसूस होती है जब हम इस गीत को बार बार सुनते हैं। वैसे तो पंजाबी रचना से प्रेरित होकर हिंदी फिल्म के लिए नए रूप में तैयार किया गया। अखिल सचदेवा ने स्वयं इसके संगीत और गायन में योगदान किया। रिलीज के बाद ये गीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वर्ष के सबसे अधिक सुने जाने वाले रोमांटिक गीतों में शामिल रहा। कौन सा गीत है वो? जी हाँ, अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की आवाज। कुमार ने लिखा और तुलसी कुमार ने ही इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है छायालोक 107 FM रेनबो पर।

एक और कोशिश आपके साथ हम देखते हैं। हेलो, आवाज कहीं गुम है लेकिन आप तो हैं। हेलो, चलिए हमारे साथ जिनकी बात हुई वो थी अप्सरा गायन जी शिवपुर से, और इन्होंने जिस गीत की मांग की वो है आशिकी। जी नहीं, आशिकी टू नहीं, आशिकी वन। कुमार शानू की आवाज में समीर के बोल और नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में ये जो फिल्म है बहुत ही फेमस हुई थी एक जमाने में। इतनी फेमस हुई कि लोगों को इसका सीक्वल आशिकी टू बनाने पर लोग मजबूर हो गए। आशिकी टू के गीत भी उतने ही पॉपुलर हुए। आगे बढ़ेंगे इस गीत के साथ और फिर हम वापस आते हैं 2213-1341 पर, जमे रहिए। और फिलहाल 8:29 और आपके लिए ये गाना।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: कार्यक्रम छायालोक 8:35 और 19 सेकंड, आपके साथ हूं मैं संचिता। आगे बढ़ते हैं। रोमेन बोशु सोर्शुना से इन्होंने जिस गीत की मांग की वो है 2016 की गीत। 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम बागी है। हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म कह सकते हैं, जो शब्बीर खान द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा उनके बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित थी। 2004 की तेलुगु फिल्म वर्षम, जी हाँ, वर्षम की रीमेक बताई जाती है, जबकि 2011 की जो इंडोनेशियाई फिल्म द रेड के साथ कुछ समानताएं देखी गई। वैसे रोमेन जी, आपका ये जो गीत जिसकी फरमाइश आपने की है, क्योंकि आपकी भी लाइन कट गई इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाए ज़्यादा। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर, सुधीर बाबू, अपनी पहली हिंदी फिल्म में सुधीर बाबू को देखा गया और सुनील ग्रोवर सहायक भूमिका में काफ़ी पसंद किए गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बागी फिल्म से एक गीत अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में हम सुनेंगे। वैसे इससे भी पहले एक गीत आई थी, एक फिल्म आई थी जिसका नाम बागी ही था, लेकिन इस फिल्म में सलमान खान ने अभिनय किया था और रोमेन बाबू ने जिस गीत की फरमाइश की है वो है, वैसे तो उन्होंने फिल्म का नाम नहीं बताया, लेकिन हर कसम से बड़ी है ये जो गीत है, इसे आनंद मिलन ने संगीतबद्ध किया और आप सुनेंगे सबके साथ कार्यक्रम छायालोक में। सुनते रहिए, आगे बढ़ेंगे अगले गीत के साथ।

हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, रेबल लव, विद्रोही प्यार। जी हाँ, 1990 की फिल्म है ये, आपको बता दूं रोमेन जी। वैसे इस गीत की फरमाइश आपने बागी फिल्म से की थी, जो कि 2016 की फिल्म नहीं है बल्कि 1990 सलमान खान की फिल्म है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा ही एक और फिल्म उस दौरान बनी थी, दिल, एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी और इसमें भी हमने विद्रोही प्यार यानी रेबल लव देखा। ये कोई 1990 को 22 जून को रिलीज हुई थी, जिसमें आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और सईद जाफरी जैसे कलाकार नजर आए थे। राजा और मधु की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म से एक गीत, जो कि बिल्कुल बागी जैसी ही कहानी है रेबल लव की। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज, समीर ने गीत के बोल लिखे थे और आनंद मिलन ने इसे संगीतबद्ध किया। आठ बजकर 44 मिनट 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक, आपके साथ हूं मैं संचिता।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कुछ गीत जो कि आपके द्वारा फरमाए हुए हैं और कुछ मेरे पसंद के। मेरे साथ थे जीवन प्रामाणिक जी फिशरीज गेट से, फिशरी गेट, और इन्होंने कहा कि 1990 एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें पास की कि 1990 में ही एक और फिल्म बनी थी दिल जैसी ही, और जिसका नाम था दीवाना मुझसा नहीं, जिसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित को जो है कास्ट किया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, आपने अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे ही दी है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम भी दे देते हैं और इस फिल्म से एक गीत सुना देते हैं। ये जो फिल्म है ना दीवाना मुझसा नहीं 1990 में रिलीज हुई थी, ये आपने सही कहा, और 10 जुलाई के आसपास परवेज और नागेश्वर राव की फिल्म थी। आमिर खान को कुछ अजय शर्मा और ऋचा शर्मा अनीता के किरदार में हमने देखा, जोसेफ सुंदर भी कास्ट किए गए थे, और ये भी बेकरार करके एक फिल्म थी, उसकी रीमेक थी, 1986 की फिल्म थी बेकरार और उसकी रीमेक थी दीवाना मुझसा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन जी, आपके लिए ये गीत सुनाते हैं अमित कुमार, साधना सरगम की आवाज, समीर के बोल को संगीत से सींचा आनंद मिलन ने। आठ बजकर 52 मिनट 34 सेकंड 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक।

लेकिन हमारे बीच कोई थे, ममता जी, आपका टाइटल नहीं मालूम, ममता जी हावड़ा से, इन्होंने कहा कि बहुत प्यार से वो एक गीत सुनाना चाहती हैं मिठुन दा को, यानी कि मिठुन चक्रवर्ती को, क्योंकि वो बीमार हैं। तो उन्हीं की फिल्म 1985 की फिल्म है, 1985 की फिल्म है प्यार झुकता नहीं। बिल्कुल विजय सदाना ने निर्देशन किया था इस फिल्म का, और आप सुनना चाहती हैं और सुनाना चाहती हैं, खासकर मिठुन चक्रवर्ती का नाम लिया इन्होंने शब्बीर कुमार की आवाज़ में। तो यही है आखिरी गीत इस कार्यक्रम का आपकी तरफ से ममता जी, सुनते रहिए, साथ रहिए अगले कार्यक्रम का, और फिलहाल इजाज़त दीजिए संचिता को, फिर से मिलते रहेंगे ऐसे ही कार्यक्रमों में।